0: This program was brought to you by
1: Live Lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
0: And
2: cash ab jeb mein nahi, barah raast bank account mein. Payment leta hoon sirf raast se. Yehi hai cash ki pakki hifazat.
0: And
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
4: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
5: AGS Tubular दिखाए काम. AGS Tubular बैटरी दिल को है आराम.
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब वहां HBL.
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां खाब वहां HBL.
8: शोबे सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती है 100% ऑर्गेनिक अज्जा से, जो मस्नूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने. शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान 75 सालों से आपका एतमाद.

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: किसने कहा था पैसे बचा,
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या हो कार
5: चलेगी नहीं दौड़ेगी,
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।

0: टेक्नोफ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
2: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
2: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
3: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
4: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
3: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
2: आइए वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
2: लाड बनाए फरो।
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ।
4: आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: शरायत जवाबित लागू है। सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए रब्ता 0333-555-0011।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है, ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।

0: listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs that's often easy listening to for the work.
0: Number one music station. FM 100. 100. 100.
3: Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum.
4: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है। क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर-ए-मर्दानगी है?

0: से हाथ उठना
1: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
0: हाथ है उठाना तो डेटॉल कूल से नहाना।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: वन स्टेशन 100 FM।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: वन स्टेशन 100 FM।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: Trading, trust me bro.
2: Nahi scheme.
3: Committee.
1: Lad badaye karo.
3: Ye muft investment mashware chodo.
4: Is Eid easy paisa term deposit mein invest karo. Aur 13% annual profit ke saath saath 50,000 cash back jeetne ka mauka pao. आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक शरायत ज़वाबित लागू हैं
5: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं शोबे सिंगल रेमेडी जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Trading, trust me bro.
3: Nahi scheme.
4: Committee.
2: Laad banaye faro.
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत जवाबित लागू है।

0: The real station for real people. 100 FM.
1: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: This program is brought to you by
5: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition, price सिर्फ 64,49,000।
6: FM 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर आज ट्रांसमिशन।
1: जी हाँ बिल्कुल, FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद है जनाब मोइन ताजी साहब, माशाल्लाह बड़े सीनियर सनाखा हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह 2 बजे के बाद, 2 बजे तक हमें ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर शफी शाह जलीली साहब, और एक खूबसूरत सा बयान होगा आज की दिन के हवाले से। और इंशाल्लाह उनके साथ साथ फिर 3 बजे हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सैयद यूसुफ बुखारी साहब। और इस तरह ये ट्रांसमिशन इंशाल्लाह 5 बजे तक बशर्ते जिंदगी इसी तरह जारी रहेगी। जी मोइन भाई, आज माशाल्लाह योम अरफा का दिन है और बड़ा मुबारक दिन है, आपको पता है। और यकीनन सब लोग वहां पर जो है बस अल्लाह की बारगाह में मौजूद है वहां पर।
2: आहोजारियों का सिलसिला जारी है, नदामतों का सिलसिला जारी है, और दो कपड़ों में
1: देखे
2: अहराम की हालत में,
1: वहां चाहे वो शाह है चाहे वो फकीर है, सब एक ही है, एक ही सब में खड़े, सब महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज।
2: एक अजीब समा, और ऐसा समा के इसका बयान कोई करना चाहे तो भी लफ्जों में नहीं कर सकता। बहुत हद तक बहुत अच्छे अच्छे शोरा इकराम ने जो है यकीनन इसका तस्करा आपने अपने कलामों में किया,
1: बेशक बेशक।
2: लेकिन यकीनन जो ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है, जो रूहानियत, जो हर एक फर्द के साथ अपनी अलग है,
1: हर इंसान की अपनी कैफियत है, हर इंसान की अपनी कैफियत है, बेशक ही बहुत कुछ बात की आपने।
2: ये रब का जो मौजदा है, हर इंसान एक अपनी जाती कैफियत के साथ जो है रब के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है,
1: बेशक
2: अपने गुनाहों को लेकर, अपनी माजी की जिंदगी को लेकर, और मुस्तकबिल, अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो जिस अंदाज से रब के साथ हम कलाम है और महवे इल्तजा है और जिक्र अस्कार के आलम में है, तो वो बयान जो है
1: दुनियादारी से बिल्कुल कटा हुआ, बिल्कुल कट गया, दुनियादारी से बिल्कुल कट के बिल्कुल रब की बारगाह में से रब के साथ मौजूद है।
2: बल्कि इसको यूं कह लें कि इस वक्त रूह कायनात पर एक अलग से दुनिया वहां पर आबाद हुई,
1: एक अलग दुनिया बेशक,
2: और उसका मंजर ही अलग है
1: बाबा।
2: और उसके ऊपर जो अनवार और तजलियात के जो रब की तरफ से जो नजूल हो रहे हैं वो भी, यानी कि कहा जाता है, उलमाए इकराम फरमाते हैं कि यौम अरफा का दिन रब की बारगाह में बहुत अफजल है,
1: बेशक बाबा,
2: बड़ा फजीलतों वाला है। और इस दिन वो रब जो है वो बख्शिशों के खजाने उसने खोले हुए होते हैं, जो जैसे मांग रहा होता है, जिस अंदाज से मांग रहा होता है, जिस कैफियत में मांग रहा होता है, मेरा रब करीम है रहीम है, वो उस अंदाज से उसको नवाजता है। तो ये आज का जो मंजर वहां पर जो पेश हो रहा है ये कायनात में सबसे मुख्तलिफ है,
1: और फिर दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है,
2: दुनिया का सबसे बड़ा
1: मतलब जितने लोग यहाँ मौजूद है इतने दुनिया के किसी इज्तिमा में होते ही नहीं है,
2: बिल्कुल ऐसा ही,
1: दुनिया का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का,
2: कोई किसी को देख नहीं रहा, कोई
1: किसी को फिक्र ही नहीं है, कोई इधर उधर की कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, बस सब
2: वो सब रब के साथ जुड़े,
1: बस बस उनका एक ही रब्ता है, बस
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनके जहन में उनकी सोच उनकी आंखें सब सिर्फ रब को देख रही है,
2: रब को देख रही है,
1: और रब उन सबको देख रहा है,
2: बिल्कुल देख रहा है,
1: रब उन सबको देख रहा है।
2: देखना जब आपको उलमा कहते हैं कि जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका नाम जो है हाजियों की लिस्ट में आ गया है तो बरहमतों का सिलसिला शुरू हो गया। अब जब तक आप सारे अरकान पूरे करके वापस नहीं आ जाते, जब तक आप पर रहमतों का नज़ूल जारी रहेगा,
1: सुभान अल्लाह,
2: आप उन हाजियों में शुमार हो गए,
1: हर लम्हा जो रहमतों का नज़ूल चल रहा है,
2: बिल्कुल ऐसे ही,
1: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत वाकई। अच्छा पता, आप यकीन करें, हम तो बस हमारी तो आज अल्लाह ताला बस आपको हम सबको अल्लाह ताला वो दिन दिखाए, इस दिन हम भी वहां मौजूद हो, और यकीन करें जिक्र हो रहा था मेरे खुद जिसमें छिछरी सी हो रही है, बिल्कुल
2: मैंने जैसे आगाज में कहा ना कि मैं आपके इंतजामिया का शुक्र गुजार हूँ कि आज इतने अफजल दिन के दिन मुझे याद किया, तो मैं या आप किस लिए जमा है, अल्लाह उसके महबूब के
1: जिक्र के लिए, बेशक बेशक।
2: तो यौम अरका की फजीलत से अल्लाह हम सबको भी फैजिया फरमाए,
1: बस बस बिल्कुल हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। और यकीनन आज का ये खूबसूरत दिन है, और आप और हम सब साथ साथ इंशाल्लाह था, और ये हमारी महफिल जो और ज्यादा खूबसूरत होगी इंशाल्लाह, डॉक्टर साहब आएंगे और ज्यादा फिर क्यों जिक्र होगा, बयान होगा, तमाम चीजें होंगी आज के यौम अरफा के हवाले से, दिन के हवाले से। और फिर माशाल्लाह मोइन ताजी साहब बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ने वाले हैं, اور اب یہ کہ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ جب واپس آئیں گے تو بہت خوبصورت کلام کے ساتھ پھر موئن تاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ. تو بالکل آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا اور یقیناً جو ہے 5 بجے تک یہ ٹرانسمیشن بالکل جاری ہے. سلسلہ تو آپ کو پتا کہ رب سے ملاقات کا اور رب سے ذکر کا, رب کے ذکر کا سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوتا,
2: ختم نہیں ہوتا.
1: یہ ہمارے معاملات رکھے ہم اپنا وقت لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اتنے سے اتنے بجے, اتنے سے اتنے بجے, اتنے, ورنہ یہ رب سے کہتے ہیں, رب سے جب کنیکٹ ہو گئے ہو گئے ہم, جب وہ کہتے ہیں یہ وہ وائی فائی ہے, جب یہ کنیکٹ ہو گیا تو یہ ٹوٹتا نہیں ہے,
2: بالکل
1: یہ نہیں ٹوٹتا, یہ وہ وائی فائی ہے, ہمارے وائی فائی ہے جو ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتے ہیں, پاسورڈ بھی چینج ہو جاتا ہے, مگر وہ جو وائی فائی ہے وہ اس وائی فائی سے جب ایک وقت کنیکٹ ہو گئے نا تو وہ پھر وہ بس پھر جڑ گئے تو جڑ گئے. پھر
2: وہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دعا یہ کرنی آج کے دن کہ اللہ ہمارے قلب کو جاری فرما دے.
1: آمین آمین.
2: ہم جس عالم میں بھی ہو لیکن ہمارا قلب اللہ کا اور اس کے محبوب کا
1: ذکر کرتا رہے. سبحان اللہ. بالکل ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
0: آئے عہد کریں کہ ہم صرف اسلامک بینکنگ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ دل کے اطمینان کے ساتھ اسلامک بینکنگ ہے سب کے لیے.
3: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر کھانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
4: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے, اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں.
3: لیو لائٹر, ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کانورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
5: ہنڈے. لایا ہے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن, پرائس صرف 64,49,000.
6: یا

0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन।
1: जी हाँ बिल्कुल, आज की इस हज ट्रांसमिशन में आप सब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबको खुश आमदीद। और इंशाल्लाह इस सिलसिला 5 बजे तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद जनाब मोहिन ताजी साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह बड़े सीनियर तनख्वाह हैं, और इंशाल्लाह कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर शफी शाह जलील साहब, हमें ज्वाइन करेंगे, और 3 बजे इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सैयद यूसुफ बुखारी साहब। तो ये खूबसूरत सा बाबरकत महफिल और ये सिलसिला इंशाल्लाह 5 बजे तक जारी सारी रहेगा। जी अब इसके बाद कौन सा खूबसूरत सा कलाम है आज के दिन के हवाले से मोइन भाई?
2: उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी,
1: सुभानअल्लाह।
2: उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असल मुराद हाजिरी उस पाक दर की है।
1: सुभानअल्लाह।
2: तो आज का ये जो दिन है, तो ये जो पूरा हज का जो एक पूरा एक माहौल जो है, ये उलमा इकराम फरमाते हैं ये है क्या, ये अल्लाह के महबूब लोगों की सुन्नत है।
1: क्या बात,
2: रब ने अपने महबूबों की अदाओं को पसंद किया,
1: पसंद किया
2: और उसको राइज कर दिया।
1: क्या बात,
2: फर्ज की सूरत में कि अब आपने कयामत तक ये अमल दोहराना है
1: बेशक,
2: क्योंकि मुझे पसंद है।
1: हाँ बेशक बेशक,
2: और मुझे पसंद क्योंकि मेरे महबूब लोगों ने किया।
1: सुभान अल्लाह।
2: तो उनकी ये अदाएं
1: बेशक,
2: ये इराम का पहनना, ये शबो रोज के जागना, ये जिक्र व अस्कार करना, ये सफर, ये मामला सारे जो हैं, ये बेसिकली जो है उलमा इकराम फरमाते हैं ये अल्लाह के महबूब लोगों की सुन्नतें हैं जो रब हमसे करवा रहे हैं और उन सुन्नतों को ताजा करवा रहे हैं।
1: बेशक बेशक, अल्लाह को क्यों, वो तमाम चीजें अल्लाह को पसंद आ गई,
2: वो पसंद आ गई तो उसको राइज कर दिया।
1: उसको राइज कर दिया
2: कि अब ये कयामत तक जो है सिलसिला जारी रहेगा। और आपने ये अमल इसी अंदाज से दोहराने, तो आइए हुजूर की बारगाह में चलते हैं मक्के से मदीने की तरफ।
1: क्या बात, सुभान अल्लाह।

0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन
1: FM 100
2: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
3: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
3: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
6: नई स्कीम,
7: कमिटी,
8: लाड बनाए फरोख,
9: ये मुफ्त इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
10: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: शराइत ज़वाबित लागू हैं।
12: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसी नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
13: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
14: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
15: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
16: Sivaj Stone, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
0: This program is brought to you by
17: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition, Price सिर्फ 64,49,000।
1: FM 100.

0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन।
1: FM 100
0: It's 2:45 PM. This time check is brought to you by
2: आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसे डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: This program is brought to you by
3: Hyundai लाया है Elantra 1.6 Special Edition, price सिर्फ 64,49,000।
1: FM 100
0: This program is brought to you
1: FM 100
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: ईद उल अज़हा पर सफाई की रिवायत, महफूज हवाई सफर की जमानत, तवज्जो फरमाएं। एयरपोर्ट्स के अतराफ कुर्बानी की बाकियात खुले आसमान तले न छोड़ें। ये बाकियात एयरपोर्ट्स के गिर्द परिंदों की तादाद में इजाफे का बायस बनती है और जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात में इजाफा हो जाता है जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। एयरपोर्ट्स के गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। आएं, जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाएं, थोड़ी सी एहतियात से फजाई सफर को महफूज बनाएं। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी।
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन।
1: जी हाँ बिल्कुल, हज ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोइन ताजी साहब, और इंशाल्लाह बस डॉक्टर साहब का मैसेज आया कि ऑन दी वे हैं, पहुंचने वाले हैं। हो सकता है रास्ते के लाजमी ट्रैफिक के मसाइल भी हैं साथ साथ हमारे, और इंशाल्लाह साथ साथ हमें ज्वाइन ही साथ ही लगते ज्वाइन करेंगे हमें यूसुफ बुखारी साहब इंशाल्लाह। जी मोइन भाई, अभी कौन से शामिल कर रहे हैं अभी जब तक?
2: हाँ जी, जब तक मेहमान आ जाते हैं तो क्योंकि रोडों के मामला भी हैं और ट्रैफिक
1: के मामला भी चल रहे
2: हैं, थोड़ी देर हो जाती है जी, तो जब तक जो है ना हम अपनी हाजिरियों को कबूल फरमाएं।
1: बेशक बेशक,
2: यानी कि अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजिरियां पेश करते रहे,
1: बिल्कुल
2: कोई एक लम्हा इंशाल्लाह हमारी बख्शिश मगफिरत का,
1: कोई पता नहीं कौन सा लम्हा कबूलियत का,
2: कबूलियत का
1: कौन सा लम्हा,
2: हमारे मरहूमीन के लिए भी अल्लाह इन घड़ियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
1: आमीन आमीन आमीन आमीन।
2: कलाम है जो मुझे गुनेगार ने लिखने की कोशिश की है।
1: अच्छा माशाल्लाह,
2: दुआई अशआर है, रब की बारगाह में आज के यौम अरफा के दिन पेश करते हैं।
1: जी जरूर इंशाल्लाह।

0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन।
1: जी हाँ बिल्कुल, हज ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। हमारे साथ मौजूद जनाब ताजी साहब माशाल्लाह मौजूद हैं, और हाफिज हसनैन साहब क्या कहते हैं, क्या बात है उस्ताद जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाफिज हसनैन साहब बिल्कुल हमारे साथ रबते में, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो देख रहे हैं भाई अपने अब्बा हजूर को देख रहे हैं, माशाल्लाह। हाफिज साहब मौजूद हमारे साथ, माशाल्लाह, खुश रहो सलामत रहो बेटा जी। और अब कौन सा कलाम आप शामिल कर रहे हैं?
2: पैगाम सबल आई है,
1: आए है, क्या बात है, क्या खूबसूरत कलाम है, बड़ा ये भी कामयाब कलाम, बड़ा
2: इंशाल्लाह एक दो शर्त के हाजिरी के लिए
1: जी आप

नहीं भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोली।

0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन FM 100 FM 100
1: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन।

0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन
1: FM 100 FM
2: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: सर इतना भारी जानवर गिराया और गोश्त की कटाई भी आपकी मर्जी की,
4: तो ये लो कैश पेमेंट तुम्हारी मर्जी की।
3: कैश नहीं चाहिए आपके हाथ से, पेमेंट सिर्फ रात से।
5: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
1: FM 100, 100, 100, 100, 100.

0: FM 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.

0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन।
1: जी जनाब, बिल्कुल हज ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद हसन यूसुफ बुखारी साहब। जी बुखारी साहब, आप माशाल्लाह कौन सा कलाम शामिल कर रहे हैं?
2: ये है जी, बड़ा खूबसूरत कलाम है
1: जी।
2: कलाम
3: Huh?

0: FM
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365

0: झलक।
1: आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन।
2: जी हाँ बिल्कुल, हज ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। हमारी ट्रांसमिशन जो है कराची के साथ साथ लाहौर के स्टूडियो से भी आप तक पहुंच रही है। तो तमाम ही कराची लाहौर के तमाम ही सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इमरान खान शोभी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और हमारे साथ मौजूद हमारे सीनियर मोस्ट सीनियर सनाखा माशाल्लाह जनाब सैयद हसन यूसुफ बुखारी साहब। जी बुखारी भाई, अब माशाल्लाह कौन सा कलाम शामिल कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से? माशाल्लाह
3: कलाम बड़ा खूबसूरत और बहुत यानी के मकबूल और हज बैतुल्ला की सआदत के हवाले से ये जो मैं शुरू कर रहा हूँ
2: जी जी,
3: कि हम सब यानी जो जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे, इस्ताद दे और ये सआदत बख्शे, तो हम ये सोच कर जाएं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमसे कोई लग्जिश ना हो जाए, कोई ऐसा अमल ना हो जाए जिससे हमारा सारा अमल बेकार हो जाए।
2: बेशक
3: हज के बेशक कि हम इतनी एहतमाम और इतना सब कुछ, क्योंकि बहुत बारीकी है,
2: बहुत बारीकी
3: है, बहुत बारीकी
2: बेशक, बेशक।
3: तो हम कोशिश पूरी करें और उस पर अमल करें, हम ट्रेनिंग भी लें जिस तरह हज पे जाते हैं हज बैतुल्ला के लिए, तो वो
2: ताकि तमाम अरकान सही तौर पर मालूम अदा कर सके,
3: पूरी मालूम जो हमारे जो आलिम दीन है जो
2: उलमाए करामों में देते
3: हैं वो बताते हैं कि ये ऐसा ना हो तो कहीं आपका जो है ये, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो शायर ने भी बहुत खूबसूरत कहा
2: जी बिस्मिल्लाह।

0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन।
1: जी हम ब्रेक के बाद आ चुके हैं दोबारा और आपके साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह 5 बजे तक हम आपके साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह ताला। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद हसन यूसुफ बुखारी साहब। जी बुखारी साहब माशाल्लाह, अब कौन सा कलाम शामिल कर रहे हैं आज?
2: जो भाई ये बगैर कहते हैं ना वसीले और जरिए के बगैर कुछ नहीं मिलता, तो अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे लिए एक वसीला बनाया।
1: बेशक।
2: तो अगर अल्लाह तक रसाई हासिल करनी है तो उसके महबूब से
1: लाजमी जरूरी
2: जरिए शुरू जाना।
1: बेशक।
2: तो उनके बगैर तो यानी कि ईमानी मुकम्मल
1: ही नहीं है। उसने तो लाजमी देखे ना, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत में भी अपने महबूब का जिक्र साथ लाजमी और लाजिम मलजूम करार दे दिया।
2: ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल।
1: अब देखें
2: अगर जब अपने नाम से जुदा नहीं किया तो फिर उसके बगैर कैसे
1: हो सकता है? हो नहीं सकता ना, हो नहीं सकता।
2: ईमान मुकम्मल,
1: तो
2: ये हमारा ईमान है
1: बिल्कुल बेशक
2: कि उनके दर से रहमान मिला, यानी कि वहां तक पहुंचना है तो आपको
1: ना बेशक
2: मोहब्बत दिल में बसानी लाजमी है।
1: बेशक जरूरी है, जरूरी है वो,
2: और उनके बगैर
1: जरूरी है बेशक।
2: मैं इसी से मुनासबत से
1: जी बिस्मिल्लाह
2: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد

0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन। It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसे डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: सर, इतना भारी जानवर गिराया और गोश्त की कटाई भी आपकी मर्जी की,
3: तो ये लो कैश पेमेंट तुम्हारी मर्जी की।
2: कैश नहीं चाहिए आपके हाथ से, पेमेंट सिर्फ रात से।
4: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
0: FM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0: आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन
1: जी। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर की मतलब खुश आमदीद अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। यकीन 5 बजे तक हम आपके साथ मौजूद तो हैं, मैं थोड़ा सा वक्त है हमारे पास 10 मिनट हैं। जी बुखारी साहब आप कौन सा कर रहे हैं?
2: ये वो मैं अशार कह रहा था कि हमारे एक सबके اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد معدن الجود والكرم।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, ना तो अल्लाह और रसूल से खयानत करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। सूरह अनफाल।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
3: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
1: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
0: HBL Freedom Account, जहां खा वहां HBL।
2: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: हाथ ना उठाना।
1: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
0: हाथ ना उठाना तो डेटॉल कूल से नहाना।
2: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
3: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
4: नई स्कीम,
5: कमिटी,
3: लाड बनाए फरो।
6: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
7: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: शराइत ज़वाबित लागू हैं।
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए.
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: HBL Freedom Account, जहां खा वहां HBL.
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.

0: ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: तुम कभी ना झुकी मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
2: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
3: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
4: सर, इतना भारी जानवर गिराया और गोश्त की कटाई भी आपकी मर्जी की।
5: तो ये लो कैश पेमेंट, तुम्हारी मर्जी की।
4: कैश नहीं चाहिए आपके हाथ से, पेमेंट सिर्फ रात से।
6: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ बराह रास्त।
7: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
10: दिस इज योर म्यूजिक।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: से हाथ धोना
1: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
0: हाथ है उठाना तो डेटॉल कूल से नहाना।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
4: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
5: नई स्कीम,
6: कमिटी,
7: लाड बराए फरो,
6: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
8: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: शरायत जवाबित लागू हैं।

0: dedication for maximum music. This program was brought to you by.
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं.
0: And. And.
2: HBL Freedom Account. जहां खा, वहां HBL.
3: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
4: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking
5: aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath
2: HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
6: आएं अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
7: जीते 20,000 रुपए. बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम दो बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका. जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके. शराइत जवाबित लागू है. अस्करी बैंक.

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसी नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
3: नई स्कीम,
4: कमिटी,
2: लाड बनाए फरो,
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो।
5: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: शराइत ज़वाबित लागू है।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by
5: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए।
6: Haier No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। No Frost, No Worries.
7: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
4: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
3: HBL Freedom account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
5: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो।
2: नई स्कीम,
3: कमिटी,
1: लाट बनाए फरो।
4: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
3: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: किसने कहा था पैसे बचा।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशाद बारी ताला है, तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वही हर एक काम का इंतजाम करता है, कोई उसके पास उसकी इजाजत हासिल किए बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, भला तुम गौर क्यों नहीं करते। सूरह यूनुस।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।

0: ट्रेडिंग ट्रस्ट मी ब्रो
1: नई स्कीम
2: कमिटी
0: लाड बनाए फरो
2: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो
3: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक शरायत ज़वाबित लागू है
4: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी स्पैमिंग धोखादेही बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना इस सिलसिले में मदद तलब करना किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
4: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
9: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद
10: The voice of the nation, FM 100.

0: It's 7:30 PM. This time check is brought to you by
1: Dettol Cool Soap. ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए. Haier No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे mobile app से complete control. No frost, no worries.
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खा वहां HBL.
3: आए अहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए.
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं.
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता.
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या.
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं.
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी.
5: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते.
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
5: और इस वजन की असल हकीकत को समझे.
4: आइए वेट से आगे का सोचें.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: नाज में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: मुस्तनद उलमाए कराम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान भर में इस्लामिक बैंकिंग का वसीह नेटवर्क पूरी करे आपकी बैंकिंग की तमाम जरूरियात, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Higher No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे mobile app से complete control. No frost, no worries.
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खा वहां HBL.

0: समझ में पसीने के साथ हाथ उठाने का कॉन्फिडेंस भी बह जाता है, इसीलिए डेटॉल कूल सोप ये बदबू फैलाने वाले जर्म्स को दूर भगाए और बॉडी को करे 5 डिग्री तक कूल।
1: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: ट्रेडिंग, ट्रस्ट मी ब्रो,
4: नई स्कीम,
5: कमिटी,
3: लाड बनाए फरो।
5: ये मुफ्त के इन्वेस्टमेंट मशवरे छोड़ो,
6: इस ईद इजी पैसा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो और 13% एनुअल प्रॉफिट के साथ साथ 50,000 कैश बैक जीतने का मौका पाओ। आसानी से पैसे बढ़ाओ विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: शराइत ज़वाबित लागू है।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: आए एहद करें कि हम सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग का इंतखाब करेंगे, क्योंकि दिल के इत्मीनान के साथ इस्लामिक बैंकिंग है सबके लिए।
8: किसने कहा था पैसे बचा

हेलो, गेस व्हाट, हंडे लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील, और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हंडे डीलरशिप विजिट करें।

0: आसान।
1: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैशबैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
2: शराय तो जवाबित लागू हैं।

0: que están.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: Sivan Stone. एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्म-ए-नुजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए रब्ता 0333 555 0011

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशादे बारी ताला है, और जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था, और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा कहा मान लिया। तो आज मुझे मलामत ना करो, अपने आप ही को मलामत करो। ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। सूरह इब्राहिम

हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।

0: Man.
1: Hello, guess what? Hyundai laya hai Elantra 1.6 Special Edition. Aur wo bhi upgraded features. Jaise push start, multiple drive modes, cruise control, powered seat, alloy rims aur sunroof ke saath. Full premium feel. Aur price? Sirf 64,49,000. Pre-booking is open now. So jaldi karein aur abhi apni nearest Hyundai dealership visit karein.
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू हैं।

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: This program is brought to you by
0: Hyundai Laya Hai Elantra 1.6 Special Edition. Price, sirf 64,49,000.

0: हेलो, गेस व्हाट, हुंडई लाया है इलांट्रा 1.6 स्पेशल एडिशन, और वो भी अपग्रेडेड फीचर्स जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: सूफी ग्रुप की जानिब से ईद के खुशियों भरे लम्हे आप सबको मुबारक हो। This program is brought to you by
1: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition price sirf 64,49,000।
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री क्योंकि जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।

0: जैसे पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर्ड सीट, अलॉय रिम्स और सनरूफ के साथ फुल प्रीमियम फील। और प्राइस सिर्फ 64,49,000। प्री बुकिंग इज ओपन नाउ, सो जल्दी करें और अभी अपनी नियरेस्ट हुंडई डीलरशिप विजिट करें।
1: This program is brought to you by
0: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition, price sirf 64,49,000.
2: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
3: शराय तो जवाबित लागू है।
4: With Melodious Companion.

0: person, your music, only on FM 100 Pakistan.
1: It's 10:15 PM. This time check is brought to you by
2: Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
1: This program is brought to you by
3: Hyundai laya hai Elantra 1.6 special edition. Price sirf 64,49,000.
4: पेट्रोल का बिल हुआ हल्का, अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और पेट्रोल की पेमेंट QR से करने पे पाओ 10% कैश बैक। अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
5: शराय तो जवाबित लागू है।

0: चुभले दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

0: विवाद स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए राबता 0333-555-0011।
1: One, two, three, everybody come with me. This is FM 100.